0: しタムさん、今どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: ハルさんの知恵袋。
5: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स।
6: हिरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
5: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
6: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक, यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीजें दस्तियाब होती हैं। बाज में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फोन की बैटरियां और जेर जामे और मोजे तक दस्तियाब होते हैं।
5: यानी इनमें रोजमर्रा जिंदगी की तमाम ही चीजें दस्तियाब होती हैं।
6: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीजें। इनमें न सिर्फ ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 23 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान में लगातार तीसरे दिन भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। देश भर के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। लोगों को तापघात के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार बृहस्पतिवार को विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी जापान में तापमान अधिक रहा। शिज़ुओका प्रीफेक्चर स्थित हामामात्सु शहर के साकुमा इलाके में पारा 41.1 डिग्री तक पहुंच गया, जो जापान में इस साल का सर्वोच्च तापमान है। मध्यवर्ती जापान के गिफू, मिए, आइची और शिज़ुओका प्रीफेक्चरों के शहरों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। देश के 47 में से 39 प्रीफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारी निवासियों से तापघात के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। देश भर में भीषण गर्मी के कारण तापघात का शिकार हुए कई लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है। इस बीच कांतो, कोशिन और दक्षिणी तोहोकू में वर्षा मेघ बनने के साथ ही मौसम अस्थिर हो जाने की आशंका है। विशेष रूप से कांतो क्षेत्र में शाम होते होते 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बेहद तेज बारिश हो सकती है। अधिकारी लोगों से भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान, वज्रपात और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जलडमरू मध्य में जहाज़ों पर किसी भी हमले का जवाब ईरान के नागरिक ढांचे पर अमेरिकी हमलों से दिया जाएगा। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह धमकी देते हुए कहा कि वो तेहरान स्थित पुलों और बिजली घरों सहित अन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार एक सैन्य अधिकारी ने अमेरिका को इस कदम के खिलाफ चेतावनी दी है। अधिकारी का कहना है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों से जुड़ी ऊर्जा सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचों और पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इजरायली गुप्तचरों का मानना है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम के हजारों सेंट्रीफ्यूज गहरी पहाड़ी सुरंगों में स्थानांतरित किए हैं। ये भूमिगत स्थान मध्यवर्ती ईरान स्थित माउंट कोलांग में है, जिसे पिक एक्स पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि ईरान ने पिछले साल अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के बाद सेंट्रीफ्यूज यहां स्थानांतरित कर दिए थे। ट्रंप ने जल्द ही इस पर्वत पर एक बड़ा हमला करने की धमकी दी है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सोशल मीडिया पर इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वहां कोई परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है। बागई ने कहा कि ये अमेरिका का एक मनगढ़ंत बहाना है ताकि वो आक्रमण, तबाही और तोड़फोड़ कर सके।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने परमाणु मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। बुधवार को बेल्जियम में नाटो महासचिव मार्क रुते से मुलाकात के बाद कोइजुमी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि चीन ने जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर गोलीबारी अभ्यास किया, वहीं रूस ने कथित तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य स्थित जल क्षेत्र में ऐसा ही एक अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि ये बैठक एक दूसरे के सुरक्षा माहौल में आए बदलावों के बारे में जानकारी साझा करने और ये पुष्टि करने का अवसर रही कि हिंद प्रशांत और यूरो अटलांटिक क्षेत्रों की सुरक्षा का मुद्दा एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। पत्रकारों की ओर से ये पूछे जाने पर कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा के बारे में उनकी क्या राय है, कोइजुमी ने कहा कि फ्रांस ने अपनी परमाणु नीति बदली है और वो इस संबंध में नए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है कि कोई भी देश यूरोप और दुनिया भर के घटनाक्रमों पर बेझिझक चर्चा किए बिना अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपने जेनेसिस मिशन के लिए पहली परियोजनाओं का चयन कर लिया है। ये एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत एआई और सुपर कंप्यूटरों से वैज्ञानिक नवाचार को गति देना है। ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को एक कार्यक्रम में 278 परियोजनाओं की प्रथम सूची जारी की। इसमें परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण और सेमीकंडक्टर डिजाइन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। सर्वाधिक निवेश परमाणु ऊर्जा में किया जाएगा, जिसके बारे में मंत्रालय का कहना है कि परमाणु संयंत्रों के तीव्र व सुरक्षित निर्माण के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। जापान जेनेसिस मिशन में पहला अंतर्राष्ट्रीय साझेदार है। जापान और अमेरिका की सरकारें इस पहल के लिए 5 वर्ष की अवधि में $50 करोड़ का निवेश करने पर सहमत हुई हैं। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने फिलीपींस में हुए एक सम्मेलन में प्रबल आशा व्यक्त की है कि फिलिस्तीन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लगातार बढ़ता रहेगा। मोतेगी ने बुधवार को मनीला में आयोजित फिलिस्तीनी विकास से संबद्ध पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन की मंत्रिस्तरीय

0: बैठक की सह अध्यक्षता की। फिलिस्तीन के प्रति समर्थन पर चर्चा करने के लिए 2013 में जापान के नेतृत्व में ये सीपैड व्यवस्था शुरू की गई थी। इस बैठक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और पूर्वी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोतेगी ने कहा, दो राष्ट्र समाधान को वास्तविकता में बदलने के लिए फिलिस्तीन की व्यवहार्यता आवश्यक है। उन्होंने सीपैड के महत्व पर बल देते हुए कहा कि व्यवस्था मध्यम से दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास के माध्यम से फिलिस्तीनी राष्ट्र निर्माण प्रयासों में योगदान दे सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा विकास का हवाला दिया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।